ई पावन पवित्र शब्द साहिब श्री गुरु नानक पातशाह दा उच्चारण कीता। जिस शब्द अंदर सतगुरु गुरु नानक पातशाह सानू कलयुग जीवां नू उपदेश देंदे होए ये गल समझांदे ने, असी चंगे क्यों नहीं। कदी किसे मनुख ने अपने आप नू भी माड़ा आखिया, वो ते कहिंदा मेरे वर्गा चंगा है ही कोई नहीं, जिन्ना मैं सियाणा जिन्ना मैं सुगड़ जिन्ना मैं गुणवान जिन्ना मैं ज्ञानी मेरे वर्गा कोई संसार विच नहीं है। पर साहिब कहिंदे ने भाई चंगा किसे चंगयाई नाल हुंदा है, शुभ गुणा दे नाल हुंदा है। अपने आप चंगे बन बहना उसनू चंगा नहीं आखदे। इधर पट बाणी विच कहिंदे ने चंगे किवें हो सकने आ जे साडे अंदर मालक दी समझ मुताबक गुण होण, ते जे हे परमात्मा तेरे शुभ गुण साडे अंदर एक भी नहीं ते असी अपने आप नू चंगे किवें खवा सकने। पट तां ऐसा कहिंदे ने हम अवगुण भरे एक गुण नाई। हे मेरे पातशाह मैं ते अवगुणा दा भरिया होया, मेरे अंदर एक भी गुण नहीं है, क्योंकि चंगा ते मैं गुण नाल होना है ना। पर जे मेरे अंदर एक भी गुण ना होवे ते मैं चंगा किवें हो सकता।

कंचन नारी में जियो लोबत है, बहु मीठा माया। हे मेरे मालिक, साडे अंदर वो गुण क्यों नहीं हन, अवगुण क्यों भरे हुए ने? क्योंकि जरा साडा मन है ना, कंचन कहिंदे ने सोना ते नारी कहिंदे ने इस्त्री। बस इन्हां विषय विकारां विच पै के, मोह दे जंजाल विच फस के, माया दे मिठे रस चख के, हे परमात्मा असीं तेनूं पलाया होया।

चंगे गुणवंता हर हर दयाल। हे मेरे मालिक गुणवंता, तू साडे ते दया कर, कर कृपा बख्श। तुसी करो कृपा साडे अवगुण बख्श के, ते सानू अपने चरणा नाल ला लो। कर कृपा बख्श अवगुण सब में, मेरे अवगुण बख्श दे, मैं अवगुण हारा तेरे दर ते आ डिगा हां। अगे

मना मैं रूप, मेरा सेवा रूपी रूप चंगा नहीं, ना बंके नैना मेरे नैन भी सोने नहीं हन, ना कुल टंग ना कुल चंगी है, ना परमात्मा मेरे कुल कोई टंग है, ना मीठे बैण ना ही मेरे बोल मिठे ने, जेड़े मैं बोल बोल के तेनू अपने बस कर ला, मेरे कुल चंगा गुण कोई भी नहीं।

हे माधव, माया दे मालिक, माया दे साई, माया दे पति, हम ऐसे तू ऐसे। साधु संगत तो ध्यान देना, हुण इत्थे परमात्मा किहो जे है ते असी किहो जे आ, सतगुरु कह रहे ने हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप

करेंगे। हम पापी तुम पाप खंड। हे परमात्मा असी चंगे क्यों नहीं? क्योंकि असी पाप करने वाले हैं, तुसी पापां दा खंडन नाश करने वाले। किवें चंगे हो गए? हे परमात्मा चंगा ते फिर तू ही होया ना। निको ठाकर देसा सामने वालों चंगा तू, जेड़ा साडे अवगणा का भी नाश करी जाना। हम ऐसे तू ऐसा। आओ अगे ख्याल करिए, क्योंकि बाणी बड़ी अथाह है, बाणी बड़ी अथाह है। कोशिश करिए इस मान सरोवर ते आइए ते गुरु ग्रंथ दे अखर एक एक चुगन दी कोशिश करिया करिए। इस एक एक शब्द दी विचार इतनी कीमती है, गुरु बख्शिश करे रहमत करे जे किते मन च वस जाए जीवन बदल जाता है, जीवन पलट जाता है। हुण सतगुर ख्याल देंदे हुए कह रहे ने

तुम समसर नहीं दयाल मोहे समसर पापी। भगत कबीर जी कहते हैं हे मेरे माधो असी के हो जाए ते आप के हो जाए, कहो कबीर मेरे माधवा तू सर्व व्यापी तुम समसर नहीं दयाल। समसर कहते ने तेरे वर्गा, तेरे वर्गा कोई दयालु नहीं है कृपालु नहीं है, मोहे समसर पापी ते मेरे वर्गा कोई पापी नहीं है। तेरे वर्गा दयालु कोई नहीं, मेरे वर्गा पापी कोई नहीं, ते मेरे वर्गे अवगुण हारे दे ते अवगुण आप ही बख्श सकते हो।

मैं अवगुण हारा ते आप उपकारी हो, मैं अवगुण करी जाना आप मेरे अवगुणा दा नाश करी जांदे। ख्याल करना परमात्मा अवगुण बख्शदे हन। एक जगह भगत कबीर जी ने बड़े फखर नाल गल आखी, कहिंदे ने हे परमात्मा तो किन्ना दयालु है,

हे रमैया मैं तेरा बालक हां, काहे ना खंडस, तू मेरे अवगुण किवें नहीं नाश करेगा। किन्ना मान है, किन्ना फखर है। ते ऐसा फखर भगत ही कर सकता है, भगत ही कह सकता है जिदे हिरदे अंदर परमात्मा की याद वसी हो, जिहड़ा दावे नाल इह कह सके कि मैं तेरा बालक हां, ते अपने बालक दे तू अवगुण किवें नहीं नाश करेगा, तू अपने बालक दे अवगुण किवें नहीं बख्शेगा, मैं तेरे को अवगुण बख्शा लेने। इसलिए भाई आओ आप उस मालिक अगे किस तरह बेनती करिए, गोविंद हम ऐसे अपराधी, गोविंद हम ऐसे

हे गोविंद असी किहो जाए अपराधी हां, असी किहो जाए हां, आप किहो जाए हो। जे ता समुंद्र

एक खिन लेना हर को नाम गोविंद, हम ऐसे अपराधी। कैसा अपराध है, रात पैंदी है सौ जाने हैं, दिन चढ़ उठ के कमा कारण तुर पैने हैं, ते परमात्मा दा नाम कदो जपांगे। रात जो सोवे दिन करे काम, एक खिन लेना हर को नाम, एक खिन मात्र भी तू परमात्मा दा नाम नहीं जपदा, तेरे अंदर गुण केड़ा होया।

गोबिंद हम ऐसे अपराधी, ऐसे अपराधी। भाई साहब भाई गुरदास जी कहते ने कि हे मेरे मालिक असी किहो जिहे अपराधी हां, साढ़े अंदर किन्ने कु औगण ने। भाई साहब जी ने इस पौड़ी अंदर 22 औगणा का जिक्र किया है। कहते ने 22 औगण सब तो वड्डे मेरे विच ने। साध संगत ध्यान करना,

आंख सुनाए पूछे लाहे विश्वास। अकृत कण दी तस्वीर की है, मद विच रिद्दा पाए के कुत्ते दा मांस। कहिंदे ने कुत्ते दा मांस, मद कहिंदे ने शराब विच रिने, तरिया मानस कोपरी मनुख दी कोपरी विच उसनू रिने। तिस मंदी वास रत्तू भरिया कपड़ा लहू दा पड़िया, लाल रंग दा कपड़ा। इस नाल इसनू ढक के कहिंदे ने एक बीबी ले जा रही है, ताकल चली चूड़ी कल भोग बिलास। आख सुनाए पुछिया लाहे विश्वास, किसी ने जांदिया पुछ कर ली बीबी कुत्ते दा मास, शराब दे विच रिन्या मनुख दी कोपरी विच बनिया होया, इनू तू टक के क्यों ले जा रही है, इनू किसे वेखना है। कहिंदे ने बीबी ने जवाब बड़े कमाल दा दिता, कहन लगी वीरा सुन, नदरी पवे अकिरत कन मत होए विनाश। मैं टक के वीरा इसलिए ले जा रही हां किते अकिरत कण दी नदर ना पै जाए। अकिरत कण दी नदर पै गई, ए भी भोजन व्यर्था चला जाएगा। सो अकिरत कण दी नदर भी इन्नी भैड़ी हुंदी है, कदी पत्थर ते भी पा देवे ना ओनू भी दुफाड़ करके रख देंदी है। मैं ते समझना अकिरत कण दी नदर तो भी बच के रहना चाहिदा है। बचो अड विश्वास घातिया कोलो, अकिरत कणा कोलो, जेड़े किसे दा मनुख दा कीता नहीं जान दे, उना मालक दा कीता की जानना। अरदास करिए विश्वास काती अकिरत कण, मैं कोई ना रखंदा। पैसा पाई गुरदास जी कहिंदे

नाम तो बिना भाई तेरा किवें छुटकारा हो सकता है, ते नाम मिलदा कितों है अख्या जपन वालियां दी संगत विच, तेनू नाम मिठा लगन लग जाएगा। जपन वालियां दी संगत विच नाम तेरा आधार हो जाएगा, साच नाम आधार। जिन्हां नू नाम दा आधार हो गया फिर उदियां सारियां ही भुखां दूर हो जांदियां हन। उचारण करो श्री वाहिगुरु। इस लई हजूर बख्शिश करदे हन कि ए गुरु दी शरण विचों मिल सकदा है। जैसे मंदिर में बल हरना ठहरे, नाम बिना कैसे पार उतरे, कुंभ बिना जल नाहे टिकावे। कुंभ कहंदियां ने घड़े नू, आख्या जिस तरह जल कुंभ तो बिना टिक नहीं सकदा, आ बर्तन तो बिना जल किवें टिकाओगे भाई। वो जल बर्तन तो बिना बिखर जांदा है, जाया हो जांदा है। ते जे तैनू ही सतसंग नहीं प्राप्त होया, गुरु की शरण नहीं प्राप्त हुई, तो तेरा मनुच्छा जन्म भी इसी तरह रुड़ जाए। कि कुंभे बद्धा जल रहे, जल बिन कुंभ ना होए, ज्ञान का बद्धा मन रहे, गुर बिन ज्ञान ना होए। गुरु की शरण विचों तैनू लोक परलोक दे सुख मिलनगे।

मैं बंदा बेखरीद सच्चा है मेरा, मैं बंदा बेखरीद सच्चा है मेरा, जो पिंड सब सब कुछ है तेरा, माने माने तू तनी

अपनी कृपा करे चल कमल नानक आला दे किस दिन आम के पत परमेश्वर गत नारायण तन गोपाल गुण साखी।

मदिन होत साधु तुरे आवन जानू रे कित पाई जन्म मरण के मिटे वसूरे गुरु नारायण दा गुरु गुर सच्चा सिद्ध हार गुर तुठे सब कुछ पाया जन नानक सब बनिहार हर गुण गाओ सा सुपाई

साहिब गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह ने बख्शिश की, जिथे सारे भगतां नूं सन्मानिया उथे नामदेव जी का भी आदर किया। नामदेव जी पवित्र बाणी द्वारा मालिक दे चरणा च अरदास करते ने, कहते हे प्रभु, ये संसार एक समुंदर है, ते समुंदर विच कहते ने जदों देवत्या ने समुंदर नूं रिड़किया ते 14 रतन कढ़े, समुंदर विच बहुत कीमती नायाब तोहफे ने, पर समुंदर विच बड़े बड़े भयानक जानवर भी बैठे हुए ने। सतगुरु कहिंदे ने एक समुंदर तां ओह है जिहदे विच पाणी दा कोई अथाह नहीं, ते एक समुंदर यह संसार है। नामदेव जी महाराज इस संसार समुंदर की बात करते ने, कहिंदे ने हे मालक,

मैं अनजान हां, मैनू तैरना नहीं आंदा। तू कृपा करके जरा बांह तां फड़ा, मैं पार लंघ जावां। जिन्हां जिन्हां ने तेरी भगती कीती, जिन्हां जिन्हां ने तेरी आराधना कीती, जिन्हां जिन्हां ने तैनू ध्याया, तू मनुखां तों देवते।

मैं तेरे तो बलिहारी जावा, मैनू भगती दी दात दे, जिदे करके ए मेरे जीवन दी बेड़ी संसार समुंदर तो पार लंघ सके। ता आओ किरपा करो सरवण।

चाहना ते है तू परमात्मा दे नाल मिला, पर किवें तेरा मिलाप परमात्मा दे नाल होवे। जेड़े गुण परमात्मा चाहुंदा है वो ता तेरे विच नहीं हन, क्योंकि चंगा इंसान किसी चंगियाई नाल है, शुभ गुना करके है, शुभ कर्मा करके है। जे शुभ गुण नहीं, शुभ कर्म नहीं, ते वो चंगा किवें हो सकदा है। साहिब कथन करदे ने कि परमात्मा नाल मिलाप ते हर कोई मनुख चाहुंदा है कि मेरा परमात्मा नाल मिलाप हो जाए, मेरा संबंध जुड़ जाए। पर किवें?

ना ही कोई ऐसा ढंग है ते ना ही परमात्मा मेरे मिठे बोलने जेड़े बोल बोल के मैं तेनू अपने आप ते मोहित कर लवा। ऐसा गुण मेरे अंदर कोई भी नहीं है, मैं ते अवगुणा दा भरिया। तकना के परमात्मा रूप कैसा वेखदा, शरीरक रूप नहीं वेखदा। साहिबा ने बाणी विच कथन की

कुलवंत है, कुलवंत है, पतवंता सज्जन है, जिद हिरदे अंदर प्रभु दे नाम दा निवास है। हे परमात्मा, मेरे अंदर ते अवगुण भरे ने गुण ऐसा कोई भी नहीं। ते परमात्मा आप दी मंग है के बोल मिठे बोल, मैं जद बोलना कौड़ा बोलना। ते मेरा परमात्मा कैसा है, मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा। ओ मिठा बोल बोलदा है ते हुक्म करदा है भाई मिठा बोल बोल, जो बोल बोलने करके किसे दा भला होवे, किसे दा मन ना टुटे। हे परमात्मा, जेड़े गुण तेनू चाहिए ने मेरे विच नहीं, इसलिए मैं चंगा नहीं।

गुरु अमरदास जी महाराज, गुरु रामदास जी महाराज ते गुरु अर्जन देव जी महाराज दे जीवन च चात मारी। गहरे जा करके के गुरुआं दे जीवन कैसे सन, कैसियां कैसियां सेवावां गुरु महाराज ने कीतियां अपने जीवन विच, ते फिर बई संगतां नूं प्रेरणा कीती कि ऐसियां सेवावां करन नाल वधेरे फल मिलदे हन। पाईसा पाई गुरुदास जी, गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह निमाणियां दे मान, नितानियां दे तान, नियोटियां दी ओट, नियासरियां दे आसरे, उना दे जीवन विच चात मारी ते की देखिया के भई गुरु अंगद देव जी महाराज दी सेवा कीती, उना नू रोज इशनान करवाया, ते फिर एक दिन ऐसा आया जदों गुरु अंगद देव जी महाराज पासों अनेकां फल प्राप्त कीते। साडे देश दे विच गंगा नू पवित्र मनिया जांदा है। सनातन तो सनातन गंगा दी पूजा कीती जांदी है, ते गुरु अमरदास जी अजे गुरु नहीं सन बने, बाबा अमरदास जी सन 72 साल दी उम्र तक अपने जीवन विच हर साल मंडली दे नाल हरिद्वार जाया करदे सन, ते हरिद्वार जा करके पाठ पूजा करनी, संतां दा संग करना, ते फिर बई गंगा दा इशनान करना, ते गंगा दे इशनान करन दा फल प्राप्त करना। एक दिन ऐसा आया, इशनान कीता, जिथे आसन लगाया सी उथे नाल ही पंडित जी दा आसन सी। पंडित जी बड़े विद्वान, पंडित जी ने देखिया बाबा अमरदास जी दे पैरां दे विच पदम है, ए पदम भगवान कृष्ण महाराज दे पैर दे विच सी, ते पंडित जी ने कहा बाबा जी आप दे पैर दे विच ते पदम है, ते ए पदम आम मनुख दे पैर विच नहीं हुंदा, जिदे पैर विच होवे ओ या ते राजियां दा राजा बनदा है, सुल्तान बनदा है, या फिर संतां दा महान संत बनदा है, जेड़ा सारियां नूं परमात्मा नाल जोड़दा है। सुन के हैरान होए, लगन बड़ी सी परमात्मा दे चरना कमलां दा ध्यान तरन दे। समा होया खान दा, ते पंडित जी ने पूछ लिया बाबा जी आप दे गुरु कौन हन। गुरु तारन नहीं सी कीता, ते जदों इनकार कीता कि मेरा अजे गुरु कोई नहीं, ते पंडित जी ने कहा मैं अपना जन्म प्रिष्ट नहीं करना, मैं आप दे नाल प्रशादा नहीं छक सकता। आपने गुरु धारण नहीं कीता, कहंदे हन निगुरे दा नाम बुरा, कलेजे दे विच तीर लगा, उदास चित अपने घर वल नूं पुजे, रात सारी नींद नहीं आई, ते अमृत वेला होया कि सुनदे हन के नाल दे करों भरा दे करों उना दी नूं राणी जपजी साहिब दा पाठ कर रही है। ज्यों ज्यों पाठ सुनदे

कहन लगे, गुरु महाराज मैं अज कुड़म बन के नहीं आया। मैं जानदा हां कि आप मेरे छोटे भरा दे सदके मेरा सत्कार करना चाहते हो, पर मैं ते अज दास बन के आया। अज ते मैं अपनी झोली खैर पवाण आया हां, मेरे ते कृपा करो, मैनू अपना सेवक बना लवो। गुरु अंगद देव जी कहन लगे, आप ते मालक हो, घर दे मालक हो, आए हो ते गुरु नानक दे घर दी सेवा करनी शुरू कर दे। देख दे देख दे बाबा अमरदास जी सारा दिन संगत दी सेवा कर दे, लकड़ा टोन दे, लंगर दे विच प्रशादे पकान दे, संगता नू छकान दे, ते फिर गुरु महाराज दी भी सेवा कर दे। रात पै जांदी ते सारे सेवक सौ जांदे, ते गुरु अमरदास सच्चे पातशाह ए गागर लैके ब्यास वल चल पैंदे।

क्यों भई कोई राजा ही नहीं कोई रंक भी सेवा कर सकता है। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने एक मटका लिया एक मग लिया ते आंदे जांदे राहियां नू पानी पिलाना शुरू कर दिता। भई जिथे पानी पिलाया गुरु नानक सच्चे पातशाह ने अज ओथे गुरु नानक प्याओ दा गुरुद्वारा बनिया होया है। संगतां जांदियां हन प्यासियां जांदियां हन तृप्त होके आउंदियां हन मन दियां आशावां लेके जांदियां हन मनोकामना पूरियां करवा के आउंदियां हन। बाबा नानक जी दी इस प्रेरणा नू ले करके इस सेवा नू सामने रखदे होए पाई साहिब भाई गुरुदास जी सारिया नू

अभय पद राज अभिखन अधिक करो ए शब्द भगत नामदेव जी का उचारे होया। इस शब्द दे विच परमेश्वर दे नाम दी वड़ियाई अते भगतां दे नाल उस परमेश्वर दा प्यार इस शब्द तों भगत नामदेव जी सानू ए उपदेश देंदे ने, ऐ इंसान अगर तू परमेश्वर दा नाम जपेंगा ओदी ओट ओदा आसरा लवेंगा इन्ना भगतां दी तरह ओ परमेश्वर तेरी भी रखिया करेगा तैनू ओ परमेश्वर हर सुख हर वड़ियाई अते अपने नाम दे नाल भी जोड़ेगा और अपने वर्गा बना लवेगा। इस शब्द दे विच अनेका महापुरुषां दा जिक्र नामदेव जी ने कीता है, पर आपां भगत अमरीक दे जीवन बारे विचार करांगे। भगत अमरीक एक बड़े ही चक्रवर्ती और प्रतापी राजे होए ने। राजे भी सन पर राज कमान दे नाल भगती भी कमाई जिदे सदका अज आपां उन्हां दे जीवन बारे विचार कर रहे हैं। नामदेव जी बयान करते ने अमरीक को दियो अभय पद, भगत अमरीक नु अभय पद की प्राप्ति हुई, जन्म मरण के चक्कर तू औरत हो गए, राज पवीखन अधिक करो। जिस तरह पवीखन नु श्री रामचंद्र ने रावण नु मार के लंका दा राज दिता, क्योंकि जेड़ा भी भगत होंदा है उनु सुख परमेश्वर देंदा है। इसे तरह जेड़ा अमरीक भगत है इनु भी परमेश्वर ने बड़ी उच्ची पदवी दिती, भगतां दी पदवी। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच सवैये महल्ले तीजे के जिदे विच अमरीक भगत बारे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच इस तरह

कि जिस तरह नाम सिमर के सिद्ध बुद्ध महापुरुष सारे तर गए, नाम नाल लग के इसे तरह अमरीक पवजल तरिया, भगत अमरीक भी संसार सागर तू पार होके बैठ

भगत अमरी कुमारी भाई गुरदास जी भी बयान करते ने अपनी पौड़ी दे विच अमरीक मोह वर्त है रात पई दुर्वासा आया ए राजा अमरीक जिन्ना दे पिता दा नाम नाम भाग सी राजा अमरीक दा राज मध्य भारत उड़ीसा वाल सी। ए राजा अमरीक राज तां करदा है पर राज भाग दे सुख अपने वास्ते नहीं समझदा। राज भी कर रहा है पर नाल भगती भी। एदी भगती तो दयाल होके विष्णु भगवान जी ने अपना सुदर्शन चक्र राजा अमरीक की रक्षा वास्ते हर वक्त इन्हां दे कोल रखिया होया सी कि जदों भी भगत ते कोई पीड़ पवे तां सुदर्शन चक्र नूं ए हुकम से तू अमरीक की रक्षा करनी। इस गल की गवाही भाई गुरदास जी भी भरते। राजे अमरीक ने वर्त रखे पूजा पाठ कराया यज्ञ कराया और दान पुन करने वास्ते बिंद्रावन पहुंचया। बिंद्रावन जिथे कृष्ण भगवान जी रिहा करदे सन इस जगह आके 6 करोड़ गौवां राजे अमरीक ने दान कीतियां। 6 करोड़ गौवां दे नाल सोना चांदी अनेकां वस्तुआं होर भी दान कीतियां। धर्मी बड़ा सी नेक बड़ा सी दान पुन करके ए राजा अमरीक वापस अपने महलां नूं तुरिया। महलां विच आके वर्त तोड़ना सी वापस आंदे रस्ते दे विच दुर्वासा रिखी दा मेल होया। राजे ने दुर्वासा रिखी नूं नमस्कार कीती पर दुर्वासा रिखी क्रोधी बड़े सन। कहन लगे राजन तू इस वेले कित्थों आ रहे। राजा अमरीक कहन लगे मैं बिंद्रावन तू आ रहे हैं और महलां विच जाके वर्त तोड़ना है। मेरी इच्छा है आप जी महलां विच आके चरण पाओ भोजन छको ता मैं वर्त तोड़ा। दुर्वासा रिखी कहन लगे ठीक है राजन। जदों तक मैं भोजन ना छका तू वर्त नहीं तोड़ना मैं आवांगा जरूर। इस गल नूं भाई गुरदास जी ने अपनी वार दे विच इस तरह बयान किया है।

अम्बरीक मोह व्रत है, अम्बरीक ने व्रत रखे। रात पई दुर्भाषा आया, दुर्भाषा रिखी आया, अम्बरीक नाल मेल होया, ते हुण पेड़ हस उपारना ओठ नावन नदी सुधाया। दुर्भाषा रिखी नदी ते इशनान करन वास्ते चला गया कि राजन मैं इशनान करके आना, फिर प्रसाद छकांगा ते फिर तू अपना व्रत तोड़ी। अम्बरीक कहन लगा सत बचन। ए दुर्भाषा रिखी नदी ते पहुंचया, इशनान कीता, पर है ए मन मर्जी दा मालक दुर्भाषा रिखी। चाहिदा तां इह सी इशनान करके जल्दी वापस आ जांदा, पर इशनान करके ए होर नित क्रिया विच रुझ गए। उधर वर्त तोड़न दा समा निकलिया जा रहा। सारिया ने ही विचार कीती कि जापद हुण दुर्भाषा रिखे नहीं आणगे, क्योंकि देर बहुत हो गई है। अम्बरीक राजा कहन लगा मैं वचन दिता है, जे दुर्भाषा जी ने प्रसादा ना छकिया ते वर्त किस तरह तोड़ा। विद्वान सज्जना नू बुलाया, सारे कहा समा बीता जा रहा, दुर्भाषा रिखी नहीं आया, या तो भुल गए ने या किधरे होर चले गए ने, ते तुसी हुण वर्त तोड़ लो, अन्न ना खाओ पानी पी लो। सारियां दी सलाह ते भगत अम्बरीक ने पानी पी के ते अपना वर्त तोड़िया। इधर वर्त तोड़िया, उधर दुर्भाषा रिखी आ पहुंचे। भाई गुरदास जी बयान करते ने, चरणों दख पेख, चरणों दख लै पेख, ओ सराप देवन नू ताया। जब दुर्भाषा ने देखिया कि इन्हें वर्त तोड़ लिए, तो वह सराप देने वास्ते तैयार हो गया। अखां गुस्से नाल लाल हो गई हैं, कहन लगा राजन तू मैनू भोजन छकाए बगैर वर्त तोड़े है, मैं तेनू जिंदा नहीं छड़ना, इहदी सजा देवांगा, सराप भी देवांगा। राजे ने कहा महाराज मेरा कसूर नहीं, देर होने कारण विद्वाना की सलाह से मैं वर्त तोड़े है, पर दुर्भाषा रिखी ने एक ना सुनी, अपनी एक लिट पुट के वालां दी उन मसल के सुटिया, जिदे विच्चों एक बड़ी भयानक चड़ेल पैदा हुई, जिदे हाथ विच तलवार है। और दुर्भाषा रिखी ने हुक्म कीता उस चड़ेल नू, जेड़ी चड़ेल अपनी शक्ति नाल पैदा कीती, चड़ेल नू कहा ए जड़ा राजा अम्बरीक है, इन्ने मेरा सत्कार नहीं कीता, इन्ने वर्त तोड़े है मेरे आन तू पहला, इस करके तू इसनों खत्म कर।

ओ परमेश्वर जिस तरह उन्हें भगत अमरीक की रखा कीती नाउ ने ठाकर देवी सुदामे त्रू अटल अजूना टरे अमरीक की तरह सुदामे ते कृपा कीती त्रू भगत ते कृपा कीती भगत हेत मारियो हरनाकश भगत वास्ते नरसिंह का रूप बना के हरनाकश का अंत कीता नामा कहे भगत बस के सब अज हूं बल के द्वार करो नामदेव जी कहंदे ने केशव परमेश्वर नू के सोने केसां वाला परमेश्वर ये ओ जिहड़ा परमेश्वर है ओ भगतां दे वास है इस वास्ते तो अज तक ओ बल राज दे द्वारे ते खलोता होया है तो गुरु साहिब जी भी बाणी विच कहंदे ने भाई अमरीक ने सिमरन कीता राजा होण दे नाल राज भी कमाया ते सिमरन भी ते अभय पद नू प्राप्त हो गया आओ भाई तुस भी सिमरन करो दुनिया दे काम कार करदियां अते अपने जीवन नू

घोड़े ते सवार होके जालमां दी मौत बन के आ गया। कोई मेरे गुरु गोविंद सिंह महाराज जी दे बच्चियां नूं नीहां विच खिलार के जुल्म करे, ऐ गल बाबा बंदा सिंह जी बहादुर कोलों बर्दाश्त ना होई। सूरमे दे अखां विच खून उतर आया, डोले फरक गए। ओ जलाद जिहड़े आखदे सन गोड्यां दियां चपणियां उतार दो, कंध ना बिंगी होवे। समाणे दे रहण वाले ओ जलाद जिन्हां ने बच्चियां दे गोड्यां दियां चपणियां उतार दित्तियां सन, अज इन्हां जुलादां नूं घरों कढ के मारिया ते नाल 500 सिपाही नूं भी मार दिता है। जदों ये खबरां सरहंद विच पुजियां, बंदा सिंह बहादुर आ रहा है, हजारां दी गिणती विच शाही फौजां कठियां हो गईयां ने। अज बाबा बंदा सिंह बहादुर ने सरहंद दे उपर हमला बोल दिता है।

कबहू ना डरो। ए मालिक सानू एहो जिहा वर दे शुभ कमां तों पिछे ना हटिए, जुल्म नूं देख के कदम पछा ना खिचिए, साडी जान ते बेशक चली जाए। बहुत कुरबानियां कीतियां सिंघां ने, मुगल फौजां ने बार बार हिंदुआं ते हमला कीता, ते सिंघां ने बार बार अपनियां जानां दे के इस हिंद नूं बचाया। जिथे सिंघां ने एडियां कुरबानियां कीतियां, उथे मामा ने ते छोटे छोटे बच्चियां ने भी अपना खून डोल के सिखी दियां नीहां नूं पक्कियां कीता। फ्रक्शियर दा राज है, हर रोज 100 सिंघां नूं मारदा है तां प्रशादा छकदा है। इहदे सिपाही जांदे ने, दिन भर सिंघां नूं टोलदे रहिंदे ने, शाम तक पकड़ के लै आंदे ने, ते इह जुल्मी सामने खलो के कोह कोह के मारदा है। अज जिहड़े सिंघ पकड़ के लियांदे ने ना, इन्हां दे विच इक 18 साल दा नौजवान, बुढ़ी मां दा इको इक सहारा। जदों मां नूं पता लगा मेरे पुत्र नूं पकड़ लिया है, पापी राजा जुल्मी राजा सिंघां ते कहर टांदा है, मां दा दर्द उठिया, रहा ना गया, राजे दे दरबार विच गई। मेरा पुत्र सिंह नहीं, तेरे सिपाही उनू भुलेखे नाल लै आए ने। बई ठीक है, जे तेरा पुत्र कह देवे मैं सिंह नहीं, ते असी उनू छड़ देवांगे। केड़ा है ओ सामने बंधिया होया है। सिपाही लेके आए, असी तेनू छड़ रहे हां, सानू पता लगा है कि तू सिंह नहीं है। अज गुरु दा प्यारा कूक कूक के बोलिया, कौन कहिंदा मैं सिंह नहीं, मेरी दस्तार वल तक, मेरे चेहरे वल तक तेनू मैं सिंह नहीं लगदा, कौन कहिंदा है। ओ सामने तेरी अम्मा खलोती है, वो कहती है नहीं नहीं ओ मेरी मां नहीं है। अब तक लो सिखी किन्नी प्यारी है सिख नूं, ओ मेरी मां नहीं, हो सकता है उदे पुत्र दी शक्ल मेरे नाल मिलदी होवे, पर ओ सिंह दी मां नहीं हो सकती, क्योंकि सिंघां दियां मामां इंज सिदकों डोलदियां नहीं होंदियां। मां नस के आई, पुत्र कह दे एक बारी मैं सिंह नहीं, क्यों जान गुआंदा है, ये तेनू छड़ देंगे। अज गुरु दा सिंह जोश विच पार आया, याद कर ठंडे बुरज की कहानी, सरहंद दा साका, अजे बहुते दिन नहीं होए किमें माता गुजरी ने अपने बच्चियां नूं सेरे बन के मौत वल भेजिया सी, भुल गई है, याद कर। सिंघां दियां मामां कदों सिदकों डोलदियां ने, ओह ते आखदियां ने जा पुत्रा, अज गोविंद सिंह नूं तेरे सिर दी लोड़ है, मेरी कुख सफली होवेगी। पुत्र दियां एहो जिहियां गल्लां सुन के मां दा सिदक जाग उठिया, ऐ कलगियां वालिया, इस हिंदुस्तान दी धरती खातर तू अपना पिता वार दिता, बुढ़ी मां वार दिती, चारे लाल वार दिते, सारा सरवंश वार दिता, ते मैं अपना एक पुत्र लकोई जांदी हां। मां दा सिदक जाग उठिया, आप मुहारे ही मां दे मुख विचों कलगी तरदे जकारे निकल रहे।

कुमार जी श्री दर्शन कुमार जी वालों पेश की गई है। आप समूह संगत नू खालसा जी दे 300 साला

कि अगुओं वास्ते अरदास करोगे महाराज बख्शिश करो, ऐसे ही तरह आप संगतां दी ये सेवा करते रहन। शब्द गुरबाणी दियां कैसटां इतिहास दियां कैसटां घर घर विच पहुंचांदे रहन।

एक होर शब्द विच अपनी जीवन दी ओ झाकी दर्शा रहे ने, जो कुछ उन्हां नाल बीतिया, जो कुछ उन्हां नाल कीता गया। कहिंदे हन एक वारी दा जिक्र है, मेरियां बाहां बन के लत्तां बन के गठड़ी दा रूप देख के, गठड़ी वंगर जिवें गठड़ी बद्दी हुंदी, मैनूं हाथी अगे सुटिया गया। पूजा बांध पिला कर डारियो, पर वाहेगुरु तेरा लख लख शुक्र है, हाथी नू उस गठड़ी विचों पता नहीं कैसा अक्ष पिया, की दिसिया, हाथी चीका मारदा भज गया।

कबीर जी महाराज ने कैसी बात कही, कहंदे ने हाथी तां नमस्कारां पिया करदा, हाथी अपनी ड्यूटी नहीं दे रहा, क्यों नहीं दे रहा, जेड़ा राम मेरे च बैठा होया ओही हाथी च बैठा होया। वांकेर दे बसे भगवान, कहंदे ने मैं हैरान हां पर मैनू सजा क्यों मिल रही, ना मैं चोरी कीती, ना मैं डाका मारिया, ना मैं कोई कतल कीता, कोई गलत काम ही नहीं कीता, सजा किस गल दी। क्या अपराध संत है कीना, बांध पोच कुंचर को दीना, बांध पोट कुंचर को दीना, कुंचर पोट ले।

अवर न जाचो कोई हे वाहेगुरु। मेनू बल दे, मेनू समर्था दे के मैं एक तेरी सेवा करा। सबे साथ कुड़ावे डिठे पल्ले तेंडे लागी। सिख दा गुरु है श्री गुरु ग्रंथ साहब, और जो सिख गुरु ग्रंथ साहब दा ओट आसरा त्याग के किसे होर पासे जावेगा, किसे देवी देवते वल, होर किसे दी आसा मन विच रखेगा, कब्रां नू जाके पूजेगा, मणियां मसाणा विच जाएगा। आख्या जिवें बछड़ा अपने गऊ अपनी गऊ मां दे थणा नू छड के दूसरी गऊ दे थणा ते जाके जे दुध मंगेगा तां उसनू कदे उत्थों दुध नहीं मिलेगा, लत ही मिलेगी। साथ संगत बोलो श्री भाई गुरदास जी कहंदे हन, इसे तरह जे अपने गुरु दा ओट आसरा छड के जे दूसरे किसे पासे जावेगा तां भाई कदे पूरी नहीं पवेगी तेरी। बाबा नन सिंह जी महाराज कलेरां वाले आप क्या करदे सन, जे सिख दी गुरु ग्रंथ साहब ने पूरी ना पाई तां फिर कोई पा नहीं सकदा। सात संगत बोलो श्री सिख दा गुरु है गुरु ग्रंथ साहब, सेवा कर तां गुरु ग्रंथ साहब दी, और जिन्हां ने गुरु ग्रंथ साहब दी सेवा कीती सारी सारी रात नाम जप के गुरु ग्रंथ साहब दी हजूरी विच खड़ो के बाबा नन सिंह जी ने नाम जपया ते फिर गुरु ग्रंथ साहब विचों गुरु नानक नू प्रगट करके दर्शन कीते। सात संगत बोलो श्री भाई लैणा जी सेवा करके ही गुरु नानक दे कोलों बख्शीशां लै गए, गुरता गद्दी लै गए। गुरु नानक दे घर दी सेवा जे किसे ने मनोकामना करके कीती तां उहदी मनोकामना पूरियां होणी। जे गुरु नानक दे घर दी सेवा किसे ने निष्कामता दे नाल कीती तां गुरु नानक दे घर दे मालक बन गए। सात संगत बोलो श्री भाई लैणा जी निष्कामता दे नाल सेवा करदे दिन रात। फिर ओ दिन आया जदों गुरु नानक ने अपने हिरदे नाल ला के आख्या, लैणिया भाई तू लेना है ते असी तेरा देना है। इस वास्ते आज तो अपने अंग ना ला के गुरु नानक ने लेने नू अंगत कर देता, अपनी जोत गुरु अंगत दे हिरदे विच रख दिती ते आख्या हुण तू खंडूर विच जाके संगतां नू नाम जपाओ। गुरु अंगद देव जी खंडूर दी धरती ते बैठे हर वेले यही अरदास करम, सेवी साहिब आपना अवर न जाचो कोई, हे गुरु नानक जदों दा मैं तेनू वेख्या तेरी सेवा कीती है हुण मैनू अखां विच होर कोई जचदा ही नहीं। सेवी साहिब आपना अवर न जाचो कोई, नानक तांका दास है बिंद बिंद चुक चुक होए। रोज अमृत वेले उठ के साहिब जी उत्थे संगतां नू दर्शन देंदे हन, नाल कीर्तन नाल जोड़दे हन। एक दिन अमृत वेले दा समा गुरु अंगद दे पातशाह खंडूर दी धरती ते बह के दीवान सजाया, ए शब्द गा रहे सेवी साहिब आपना वरना जाचो कोई, तां भाई बाला गुरु अंगद दे पातशाह दे दर्शन करन आया के मैं वेखां ओ कौन पुरख है जिसने गुरु नानक नूं भी जित लिया है, जिसने गुरु नानक दा हिरदा जित लिया है। जदों भाई बाला जी आए दीवान विच साहब जी शब्द नाल गा गा के झूम रहे, और जिस वेले गुरु अंगद दे पातशाह दीआं अखां खुलदीआं सन भाई बाले ते जा पैंदीआं। साहब जी ने थोड़ी देर बाद अपने कोल बुलाया ते पुछिया, भाई कौन है, कित्थों आए? भाई बाले ने हाथ जोड़ के आख्या, गरीब निवाज मेरा नाम भाई बाला है और मैं सारी उम्र गुरु नानक पातशाह दे नाल रह के उन्हां दी सेवा कीती है। जदों गुरु अंगद देव पातशाह ने सुनिया भाई

दिल आप गवाया हाँ सदके तिन्ना गुर सिखा करण उदासी अंदर माया हाँ सदके तिन्ना गुर सिखा गुरमत गुर

परगाश है पिरम प्याला अजर गिरंदे गुर सिख मन प्रगाश है पिरम प्याला अजर जरंदे पार ब्रह्म पूरन ब्रह्म ब्रह्म विवेकी ध्यान धरंदे शब्द सुरत

जाए अंदर दरियाए नमंदे सहज समाध अगाध विच एक मन हो गुर जाप जपंदे मथे टिके लाल लाए सा

ऐसा गुरसिख जिसका जीवन सेवा सिमरन परोपकारी है, भाई साहब कहिंदे हन कि बेशक उसनू कह दिओ जिहड़े जोड़े उसने पहरे हन ओ उतार देवे, पता नहीं किस चमड़े दे होणगे। आ मेरे तन दे चमड़े दे जोड़े बना के ऐसे गुरसिख नू पहना दिओ जिसका ऐसा जीवन है। गुरसिखी गुरसिख सुन अंदरों सियाणा बाहरों भोला, शब्द सुरत सावधान है बिन गुर शब्द ना सुने ही बोला। जिथे गुरु की बाणी दी विचार होंदी है झट पहुंच के कन दे के सुनदा है, ते जिथे निंदिया चुगली हो रही है उथों कन्नी कतरा जांदा है, क्योंकि निंदिया चुगली सुनन नाल पुन सड़ जांदे हन। सत संगत विच बह के गुरु की बाणी सुनन नाल पुन वध जांदे हन। इसलिए गुरु के सिख दा ऐसा जीवन भाई साहब कहिंदे हन, बेशक मेरे तन दे चमड़े दे जोड़े ऐसे गुरसिख नूं पहना।

और भाईचारे का उपदेश है। धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह कहते हैं, साच कहो सुन ले लो सब है, सारे सुन लो, साच कहो सुन ले लो सब है, जिन प्रेम की हो सारे जपो न भई, जिन प्रेम की हो तिन ही भग पायो। जिन्होंने उस ईश्वर के चरणा नाल प्रेम कीता है, प्यार कीता है, चरणा नाल प्रेम कीता है, प्यार कीता है, उन्हां नूं ही उस ईश्वर की प्राप्ति हुई है। साथ संगीत बोलो श्री भाई साहब भाई गुरदास जी अपनी बाणी

सैदा जी होए। गरीब जा सिख सी बिचारा, मलाह सी, एक बेड़ी रखी हुई सी, नदी दे किनारे, एक किनारे तो दूसरे किनारे तक जो यात्री पार जाना चाहते सन उन्होंने पार रोज लगा देंदा, और फिर उन्होंने कोलों जो पाई पैसा दो चार रुपये कमाई होंगी उदे नाल अपनी गृहस्थी का गुजारा करता। सत सगत बोलो श्री। लेकिन हिरदे विच प्यार सी धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह का, हिरदा प्यार नाल भरिया होया सी। एक दिन मन विच आया इस बेड़ी विच मैं रोज यात्रुआ नू पार लगाउंदा हां, किते एक दिन मेरा गुरु धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चा पातशाह किते इस बेड़ी विच आ बैठे और उसनू पार लंघाउण दी सेवा मैनू मिल जावे, तां मेरे कितने को वड्डे भाग होणगे। लगा रोज अरदासां करन, इहदे बाकी दे साथी मलाह अपनियां अपनियां बेड़ियां लै के सेदे दे नाल एक दिन खड़ोते होए ते सेदे ने आखिया, मित्रो मेरा मन करता है कि एक बार मेरी बेड़ी विच मेरा गुरु धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चा पातशाह चरण पावे। सारिया ने मखौल की थी, ओ सहदिया अवल तां गुरु आउण नहीं लगा, और जे गुरु इत्थे आ भी गया तां साडियां नवीं बेड़ियां छड़ के तेरी पुरानी बेड़ी विच बैठेगा। भाई सहदे दे नैन कटोरे बार आए, आख्या जे मेरा प्यार सच्चा होवेगा तां मेरा गुरु मेरे कोल जरूर आएगा। सत संगत बोलो श्री। भाई सहदा उत्थों अपनी बेड़ी थोड़ी दूरी ते लै गया, नदी दे विचकार खलार लई, याद करदा है धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह, ओ साहब जी कदों दर्शन दोगे, कदों इस निमाणी दे कोल आओगे और एक बार कहोगे सहदिया मैनू अपनी बेड़ी विच बिठा के परले पार लै जाए, क्योंकि मेरे विच कोई गुण नहीं जिहदा मैं तेनू वास्ता देऊं। गुण तो हीन, रूप तो हीन, कर्म तो हीन, कोई ऐसा कर्म नहीं जिसका मैं तेनू वास्ता देऊं। ऐसी जदों अरदास कीती और अरदास कर दिया भाई सहदे दे अखां विचों नीर वह तुरिया। तो फिर जदों कोई मन करके याद करता है तो फिर ये अरदास किथे पहुंचती है, गुरु के चरणों। भाई सहदे की अरदास भी गुरु के चरणों में पहुंची। साहब जी ने आख्या, भाई दया सिंह जी पातशाह साडा सिख भाई सहदा सानू याद करता है, आओ चलो उसनू दर्शन देन चलिए। कुछ संगतां और प्यारियां नू लै के साहब जी जदों उस नदी दे किनारे पहुंचे, संगतां और भाई दया सिंह जी आदक प्यारियां नू आख्या, तुसी इना बेड़ियां विच बह के उस पार चलो ते मैं अपने प्यारे सिख भाई सहदे दी बेड़ी विच बैठ के पार आउंदा। सत संगत बोलो श्री। नदी दे किनारे खलो के साहब जी आवाज दे रहे, ओ भाई सहदिया बेड़ी लिया ना किनारे, भाई सहदिया बेड़ी लिया ना किनारे, जेडे प्यार नाल याद कर रहा से उड़े प्यार नाल बेड़ी विच बिठा भी ना सही। लेकिन भाई सहदा नदी दे विचकार बेड़ी रोकी हुई है ते विच बैठ के अरदासां कर रहे हैं, कदों आओगे, कदों तेरे दर्शन होणगे। साहब जी जान गए ए चरणां नाल गंढ पा के बैठा है। तां धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह भाई सहदे दे हिरदे विच जिते गुरु दे चरण लै के बैठा सी, उत्थों जाके आवाज दित्ती, सहदिया अखां खोल, जिसनू याद कर रहे हैं वह किनारे ते खड़ो के तेनू आवाजा दे रहे, बेड़ी लिया ना किनारे। झट अखां खुलिया, की तकिया कलगीधर पातशाह धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चा पातशाह किनारे ते खड़ो के बाहां उचियां करके आवाजा दे रहे, सहदिया बेड़ी लिया ना किनारे, बेड़ी लिया ना किनारे। सत सगत बोलो श्री। भाई सहदा अखां मलद है, कदे बंद करता है कदे खोलता है, मैं सुपना तो नहीं वेख रहा, फिर वेख्या वे तो सच है।
ਚੱਪੂ ਮਾਰਦਾ ਮਾਰਦਾ ਬੇੜੀ ਲਿਆਇਆ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ, ਉਤਰਿਆ ਬੇੜੀ ਤੋਂ ਤੇ ਆ ਚਰਨਾ ਤੇ ਡਿੱਗਾ ਗਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਗੁੱਟ ਗਲੋਕੜੀ ਪਾਈ ਚਰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਸੱਚਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਦਕੇ ਬਲਿਹਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਓ ਸਦਕੇ ਜਾਓ, ਆਓ ਚਰਨ ਪਾਓ। ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਖੇਵਟ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ। ਖੇਵਟ ਵੀ ਪਾਰ ਲੈ ਚੱਲਿਆ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਲ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸੇਧਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ, ਚੱਪੂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਰਿਹਾ।

पहुंच के साहब जी जदों बेड़ी च उतरे बड़े प्रसन्न होए। भाई सहदे का प्यार वेख के हिरदे नाल लाया, आख्या भाई दया सिंह देश नू मोरा इहदी गरीबी कट दे। भाई सहदे ने हाथ जोड़ के आख्या गरीब निवाज मैनू

मैं अनजान हाँ, मैंनू तैरना नहीं आउंदा। तू कृपा करके जरा बांह तां फड़ा, मैं पार लंघ जावां। जिन्हां जिन्हां ने तेरी भगती कीती, जिन्हां जिन्हां ने तेरी आराधना कीती, जिन्हां जिन्हां ने तैनू ध्याया, तू मनुखां तू देवते।

सतगुरु कहिंदे ने जे मालिक नूं मिलना ही ते बच्चे वर्गा हो जा। इहदे विच को मेर तेर नहीं। कदे बच्चे ने किसे दूजे बच्चे नूं पुछिया, छोटे छोटे क्लास विच पढ़दे ने ना, अजकल ते टाइयां टाइयां तिना तिना सालां दे दाखल करवा दित्ते। कदे किसे दूजे धर्म दे बच्चे नूं किसे ने पुछिया भी तेरा धर्म केड़ा, तेरी जात केड़ी है, तेरी गोत केड़ी है? ना, आपस विच प्यार नाल हसदे ने, खेड़दे ने। सतगुरु कहिंदे ने जे रब नूं मिलना ही ते बच्चे वर्गा पुंजा। ये बड़ा भोला है, बड़ा चंगा है। 5 साल का ध्रुव तुर पिया बंदगी करना,

अजय सुरों में पीख्या खाए ऐसी दरगे मिले सजाए रोवे रामन काला पया सीता लखमन बिछड़ गया रोवे ते सुरलंक गवाए जिन सीता आंधी डारू आए रोवे पांडव पै मंजूर जिनके स्वामी रहते हजूर रोवे जन्मे जख गया एक ही कारण पापी पया रोवे शेख मसा एक पीर अंतकाल मतला।